0: Yo.
1: Big Radio Pub. Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
2: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Clean up your space with 20% off Dissolvit cleaners. And save $160 on a Super Tub single cupboard laundry tub, now $539. T's and C's apply. Shop in store and online at Mitre 10.
3: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar par milti thi to milwate hain aapko Kashish natural yogurt se jiska har spoon hai ekdam delightful 100% vegetarian gelatin and gluten free perfect hai smoothies banane ke liye tangy dips banane ke liye paneer ya chicken marinate karne ke liye ya bas seedha tab se khane ke liye kyunki ye hai naturally delicious always desi available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand bring home the taste of tradition Kashish natural yogurt
1: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
5: Yo.
1: Radio Pub.
6: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
7: सूचित किया जाता है कि अरिश्मा आरती, रोनिल नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण की मां नारायण स्वामी की पत्नी पापाकुरा के ईश्वरी स्वामी की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार के दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप रोनिल को 02111-66511 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा जा सकते हैं. सूचित किया जाता है कि अरिश्मा आरती, रोनिल नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण की मां नारायण स्वामी की पत्नी पापाकुरा के ईश्वरी स्वामी की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार के दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप रोनिल को 02111-66511 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा जा सकते हैं.
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
9: Weather update.
7: मौसम मुख्यतः साफ रहने वाला है, हालांकि कुछ बादल शायद बाद में चलकर आपको दिखेंगे एंड बाद में चलकर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. लाइट विंड्स का मज़ा आप आज लेने वाले हैं और आज टेम्परेचर ओवरनाइट 3 डिग्रीज रहने वाला है. आज दिन में टेम्परेचर 14 डिग्रीज के आसपास रहेगा.
1: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

देखते ही देखते इस साल के 8वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज है द 1st of August 2026 एंड आई होप आप एकदम से फिट और फाइन होंगे टू हमारा साथ देने के लिए ऑन रेडियो पब। मैं जिकाश आपके साथ शामिल हो चुका हूँ शाम 6 तक। यूं ही हमारा सफर यहाँ पर बना रहेगा। स्पोर्टिंग वीकेंड है, एनपीसी रग्बी शुरू हो चुका है। एनआरएल में आज वॉरियर्स खेलेगी या नहीं खेलेगी ये बार इसके बारे में आपको हम बताएंगे। एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें धमाके हो रहे हैं, कौन कौन सी टीम, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कितने गोल्स जीते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज की जानकारियाँ भी आपको हम देंगे। और कौन कौन से खास गेम्स आज होने वाले हैं ये सभी जानकारियाँ, प्लस आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, कम्युनिटी न्यूज़ थोड़ी देर में आपके लिए हम शामिल करेंगे राइट हियर ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, दिल इस्तकबाल कर रहे हैं ऑन आवर ऑसम एयरवेव्स रेडियो पब पर। मैं जिकाश आपके साथ शामिल हो चुका हूँ। क्योरा

0: Yo.
1: Radio Pub. You're listening to Chikash.
2: Alright, Commonwealth Games जो ग्लासगो में जारी है, टुडे वॉज डे 9 विच हैज कंक्लूडेड इन ग्लासगो और आज न्यूजीलैंड समय अनुसार खेल ये आज दिन में 12 बजे से पहले ख़त्म हो चुके हैं. दैट मीन्स कि फ्राइडे नाइट रहा है इन स्कॉटलैंड. तो अब डे 10 इट विल किक ऑफ टुमारो मॉर्निंग विच इज़ द 2nd of August एंड कल सुबह तड़के सुबह 12 बजे जूडो अंडर 70 kg डिवीजन में वीमेंस का क्वार्टर फाइनल होने वाला है. इसमें मोरा कोस्ता ये नज़र आने वाली है एंड उसके बाद अंडर 90 केजी मेंस क्वार्टर फाइनल भी होगा एट 12:06 PM AM सॉरी. और गेम्स के टेबल्स की अगर हम देखें तो वेल आवर एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पीपल together they have managed to get 7 golds so far, 8 silver और 8 bronze New Zealand team के पास है. Leading the pack is Australia, जिनके पास well by a record 55 gold इनके पास है, silver 30 and bronze 43. उसके बाद second position पर आता है England with 17 golds. तो all in all, Australian athletes are doing way better than everyone else in the Commonwealth Games this year.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

All right. Do you know what zines are? Spelled as Z-I-N-E-S. I know. जैसा लिखा जाता है वैसा प्रोनाउंस नहीं होता है लेकिन जीन्स दे आर स्मॉल सेल्फ पब्लिश्ड एंड इंडिपेंडेंट बुकलेट्स मेड फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन रादर देन फॉर प्रॉफिट. तो ऐसे कई लोग हैं जो अपनी खुद की कहानी छोटे से बुक में लिखकर उसको खुद ही पब्लिश करते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओ अबाउट अ टॉपिक जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं. दे आर यूजुअली फोटोकॉपीड फोल्डेड एंड स्टेपल्ड बाय हैंड रादर देन मैस प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है इसका. ये DIY सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है एंड दिस ऑफन फोकसेस ऑन यूनिक आर्ट स्टोरीज एंड नीश टॉपिक्स. ये जैसे कि मैंने कहा DIY होता है मोस्टली एंड इसको अगर बनाते भी हैं लोग तो स्मॉल बैचेस में बनाते हैं शायद 5-10 बुक और इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक. इट कैन बी पोएट्री कॉमिक्स पर्सनल डायरीज पॉलिटिकल व्यूज और अ फैन आर्ट एज वेल. तो इफ़ यू नो अबाउट दिस या फिर आप ऐसे कोई हैं जो जिसके पास ऐसा कुछ है जीन्स जो आप लोगों तक मार्केट करना चाहते हैं वेल यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू डू सो क्योंकि ऑकलैंड में ऑकलैंड जीन फेस्ट मार्केट ये आज और कल आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है 4 बजे तक चलेगा एंड टुमारो अगेन फ्रॉम 11 AM टिल 4 PM ऑकलैंड आर्ट गैलरी 1 Kitchener Street ऑकलैंड सिटी सेंटर में होने वाला है. ऑकलैंड जीन फेस्ट ये रिटर्न हो रहा है टू ऑकलैंड आर्ट गैलरी एंड अक्रॉस 2 days यू कैन डिस्कवर जीन्स प्रिंट्स एंड हैंडमेड पब्लिकेशंस फ्रॉम मोर देन 130 मेकर्स फ्रॉम थमाकी मकोरो एंड बियॉन्ड. तो एक फुल प्रोग्राम इसके लिए बनाया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM टिल 4 PM दैट यू हैव टू चेक आउट एंड दिस इज़ हैपनिंग टुडे एंड टुमारो एट द ऑकलैंड आर्ट गैलरी 1 Kitchener Street ऑकलैंड सिटी में.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: हम पर एक बज रहा है एंड रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. शिव जस्ट ज्वाइन, आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं 702 AM तो नहीं रहा 104.2 FM और आप हमें सुन रहे हैं ऑन रोवा. नाउ अगर आपके पास रोवा है, आपको एक कंपैरिजन मैं करवाना चाहता हूँ. इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन 104.2 FM एंड यू आर जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ऑकलैंड, अगर आप मान लीजिए पुकेकोई के इलाके में है या फिर बॉम्बे एरिया में है, एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन 104.2 FM, आई वुड लाइक यू टू स्विच ओवर टू रोवा एंड टेल मी द डिफरेंस. मान लीजिए आप रेडियो पर या फिर कार में हैं एंड यू आर लिसनिंग टू 104.2 FM ऑन द फ्रीक्वेंसी, आप स्विच करें रोवा ऑन योर फोन एंड लिसन टू हम FM ऑन योर रोवा ऐप और मुझे बताएं कि डिफरेंस आपको क्या महसूस होता है. नाउ यू हैव टू डू दिस इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. अगर ड्राइविंग कर रहे हैं हो सके तो पुल ओवर सेफली, या फिर आपके पास अगर पैसेंजर है लेट देम हैंडल द फोन एंड आई वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस यू कैन फील ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ऑकलैंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू 104.2 FM और लिसनिंग टू अस ऑन रोवा. तो इफ यू फाइंड द डिफरेंस, इफ यू फील द डिफरेंस, लेट मी नो कि विच वन इज ईजियर और किस में क्लियरर साउंड आपको मिलता है. 5599 पर अपने नाम के साथ अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर भेजें. स्विच टू रोवा नाउ एंड लेट मी नो व्हाट द डिफरेंस इज. इस घंटे पर हम बातें करेंगे अबाउट द प्राइवेटाइजिंग ऑफ वर्ल्ड कप मीट्स अंडर फीफा. ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड फीफा के इस प्लान से अदर सोका गवर्निंग बॉडीज़ क्या इससे सहमत है या नहीं. कुछ न्यूज़ हमारे हाथ लगी है, इसे आपके साथ में हम शेयर करेंगे.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Ready for a new look inside? Start with the Rosin Test Pot, then bring your room to life. 50% off test pots, 20% off interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Rosin, the paint the professionals use. T's and C's apply.
7: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today and tomorrow. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
8: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
7: There you have it, up to 70% off selected stock, and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today and tomorrow from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
10: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

22 मिनट हो रहे हैं 1:00। इफ यू जस्ट ज्वाइन, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन हम नाउ। फिजी एफआई के अंडर जो खेल हो रहे हैं इन दी एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले खेल खत्म हुआ बिटवीन नसीनू फुटबॉल क्लब एंड नांदी फुटबॉल क्लब। हाफ टाइम पर नसीनू और नांदी दोनों एक एक गोल से बराबर रहे हैं, एंड फुल टाइम पर नांदी फुटबॉल क्लब हैव कम आउट विक्टोरियस ओवर नसीनू फुटबॉल क्लब, बीटिंग देम बाय 3-2। इसके अलावा कल लोटोका में चर्चिल पार्क में दो बहुत ही क्रूशल मैचेस होने वाले हैं, रेवा फुटबॉल क्लब अगेंस्ट सुबह फुटबॉल क्लब एट 1 PM एंड देन फॉलोड बाय दैट लोटोका और नंडरोंगा आमना सामना करने वाले हैं एट 3 PM। नाउ दीज टू मैचेस आर वेरी क्रूशल संडे डबल हेडर, क्योंकि इन दोनों गेम्स में से पता लगने वाला है या फिर द टीम्स गेटिंग क्लोजर टू विनिंग द लीग, ये शायद पता लग जाएगा। तो कल ये दो मैचेस होंगे इन लोटोका इन फिजी, रेवा फुटबॉल क्लब वर्सेस सुबह जो दोनों पड़ोसी है, और लोटोका एंड नंडरोंगा ये आमना सामने करने वाले हैं। इफ़ यू फॉलो फिजी फुटबॉल तो आपसे प्रिडिक्शंस हम जानना चाहेंगे कि रेवा और सुबह के बीच में क्या परिणाम होने वाला है, हु इज़ गोना टेक इट आउट, इज इट गोइंग टू बी रेवा बिकमिंग या कमिंग ओवर सुबह एंड लोटोका एफ सी और नंडरोंगा एफ सी। Knowing that Lotoka is hosting the match, kya Lotoka ka home ground advantage inke favor mein kaam karne wala hai? To predictions aap apne hamare paas bhej sakte hain on 5599 par।

Now let's have a quick look at some events जो आपके आसपास हो रहे हैं. श्री राम मंदिर पर अखंड रामायण पाठ शुरू हो चुका है आज सुबह से. ये कल सुबह 10 बजे तक चलता रहेगा. You can head along there with your family and friends और इस महायज्ञ में महा अखंड रामायण पाठ में आप भाग ले सकते हैं. महाप्रसाद will be served throughout the program. तो आप जाकर यहाँ पर भक्ति भी कर सकते हैं और पेट पूजा भी कर सकते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपके लिए लेकर आ रहा है श्री राम लीला. इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है और दिस इज़ राइट एट द कोना. तो कब हो रहा है? 8th of August, मतलब कि आने वाले शनिवार को. आज सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे को रामलीला ये शुरू हो जाएगा एट 32 ग्लासगो एवेन्यू, दैट इज़ एट वैदिक सेंटर. रामलीला के लिए पूजा 5 पर शुरू हो जाएगी. रामलीला परफॉर्मेंस ऑफिशियली विल किक ऑफ एट 6 PM. टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मास्टर अशोक जी को ऑन 0211-795-4559 पर, दैट इज़ 0211-795-4559 पर. इसके अलावा मेघ उत्सव, यू हैव टू एक्सपीरियंस द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज मानसून फेस्टिवल इन ऑकलैंड. तो मानसून किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया, इसकी एक झलक और इसकी पूरी मस्ती आप इंजॉय कर सकते हैं इन द मेघ उत्सव. ये एक लाइवली कम्युनिटी इवेंट है दैट ब्रिंग्स इंडिया टू ऑकलैंड. दिस फेस्टिवल ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इमर्स योरसेल्फ इन इंडिया.

Indian culture and community spirit right here in Auckland. Cultural performances होंगे यहाँ पर, food stalls लगने वाले हैं, dedicated kids कोना है, games and activities for all ages और shopping करने के लिए भी बहुत सारे मौके रहने वाले हैं. This is happening on the 8th of August, Mount Albert Wo Memorial Hall पर, from 4:30 PM till 8:30 PM. Entry बिल्कुल मुफ्त है.

ख्वाबों में, मेरी बातों में, मेरी नींदों में, मेरी रातों में, बस तू ही तू, जाने मन मेरी जिंदगी है तू, I really miss you.

16 मिनट रह चुके हैं दो बजने में. नेशनल रग्बी लीग इट हैज़ गोन इन टू वीक 22 ऑफ 27 वीक्स ऑफ राउंड रोबिन मैचेस. एंड इस सप्ताह आज शाम 5 पर टाइटन्स और वॉरियर्स आमना सामना करने वाले हैं. इसके बाद में 7:30 PM पर पैंथर्स और रेडर्स ये खेलेंगे. ब्रोंकोस और नाइट्स 9:35 PM पर आमना सामना करेंगे. कल खेल हुआ बिटवीन स्टॉर्म एंड बुलडॉग्स, जिसमें बुलडॉग्स की जीत स्टॉर्म से 36-22 से हुई. डॉल्फिन्स ने ड्रैगन्स को 28-22 से हराया है. एंड ऑन थर्सडे रूस्टर्स की शानदार जीत हुई ओवर काउबॉयज बाय 82-12. तो इन सभी खेल के चलते हुए ऑल द मैचेस दैट हैव कंक्लूडेड टिल लास्ट नाइट, टेबल की ओर हम देखें. Warriors have sunk to third position. Well, they've got a match in hand today. Agar aaj ye bahut hi acha khelti hai, to they can come up over Roosters. Roosters second position par hai 34 points ke saath mein, lekin points difference mein ye Warriors se peeche hai. To if Warriors can get a good win in today, kuch अच्छा हो सकता है वॉरियर्स के लिए. पैंथर्स स्टिल लीडिंग द पैक 34 पॉइंट्स के साथ में, 284 पॉइंट्स डिफरेंस के साथ दिस टीम इज एट द टॉप ऑफ द टेबल. ड्रैगन्स के लिए तो खास अच्छी खबर नहीं है. ड्रैगन्स आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल एट द 17th पोजीशन और इनके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स ही है.

0: Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
3: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
4: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
5: No way.
6: We in trouble?
4: Nah, it's BP Plus.
6: What is that?
4: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
7: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
10: अब हमारा क्या होगा
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
9: तो क्या करें
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
13: डिब्बा खुल गया
14: भरत भाई टिफिन खुल गयो छे संजना का डिब्बा खुल गया
15: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
14: डिब्बा खुल गया
15: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
16: Save's massive stock liquidation sale ends Monday and everything must go. We're overloaded with stock. Our warehouses are full. Our stores are packed. So today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99. Queen beds from $8.99. Plus get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Everything must go. Must end Monday only at Big Save.
17: Good afternoon, it's 2 p.m.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good afternoon, I'm Gary Denver with the latest at 2. Two new train stations have today been officially opened in South Auckland, Drury and Pairata, to serve the booming region. Full services will start tomorrow with trains running every 10 minutes at weekday peaks. Skin cancer patients should find it easier to get treatment with funding for more GP clinics to be able to deal with suspected melanomas. Health Minister Simeon Brown says it will mean people don't have to wait so long to be seen.
19: Getting closer to home is really important so that people aren't waiting on hospital waiting lists for generally minor treatments that can be delivered in primary care.
18: New data shows property prices dipped 0.3% nationally in July. Cotality economist Kelvin Davidson says it's partly driven by strong supply, with many listings taking time to sell.
20: There are a lot of listings on the market, so there's a lot of property available to buy. The supply of available property is high. Buyers who are active know they've got a lot of choice, and so you see flat house prices.
18: In the US, investigators in the long-running Nancy Guthrie kidnapping case have released the details of two ransom notes, hoping to flush out new leads. One says the 84-year-old Arizona grandma has died. In sport, an experience of a lifetime for Imogen Harris after claiming bronze in the women's pole vault at the Commonwealth Games in Glasgow. She stood proudly on the dais next to gold medal-winning teammate Eliza McCartney during the national anthem on Sky Sport.
21: It was really special to stand on there and hear my anthem and our anthem and just have that moment together.
18: Paracyclist Devon Briggs also added a gold in the time trial this morning. So New Zealand's tally is now 7 gold, 10 silver and 8 bronze medals.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
22: Weather update.
1: आज बाकी का मौसम तो साफ ही रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है। शाम को क्लियर स्काइज, ओवरनाइट भी क्लियर स्काइज रहने वाला है, जिसके चलते टेम्परेचर इज गोइंग टू डिप टू 3 degrees ओवरनाइट टुनाइट। कल के लिए देखें तो फाइन विथ मॉर्निंग फ्रॉस्ट्स इन शेल्टर प्लेसेस, क्लाउड डेवलपिंग इन द इवनिंग, साउथ ईस्टर्ली टर्निंग साउथ वेस्टली इन द आफ्टरनून। कल भी ऑसम ऑसम मौसम रहने वाला है। हाँ, ठंड 13 degrees इन द डे टाइम, 6 degrees टुमारो नाइट।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर, पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। रेडियो हम पर आपके साथ हैं जिकाश।
1: दो बजकर दो मिनट हो चुके हैं और इस घंटे पर दो से तीन के बीच में विल बी ब्रिंगिंग यू सम बाइट्स एंड बेंटा। कुछ राइवलरीज के बारे में बात करेंगे, कुछ टीम्स के बारे में बात करेंगे जो शायद अब उतना अच्छा खेल नहीं दिखा रही है जितना अच्छा उनको खेलना चाहिए, या फिर दो ऐसी टीम्स जो अभी तक नेक टू नेक एक दूसरे के राइवल्स बने हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे सोका हो, चाहे रग्बी हो। तो आप किस टीम के बारे में बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो। 5599 पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं या फिर 0800-004-866 पर आप कॉल्स भी कर सकते हैं एंड आपसे बातें करते हुए चलेंगे ऑन दिस आवर ऑन रेडियो पॉप राइट हियर ऑन हम FM। हमने आपसे सवाल किया था कि या फिर एक टास्क दिया था टू स्विच ऑन रोवा, क्या आपने ऐसा किया है? इफ़ यू हैवन प्लीज डू सो। एक टेस्ट यहाँ से हम रन कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इफ़ यू आर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ओकलैंड, क्या आपको 104.2 FM सुनना ईजी पड़ रहा है या फिर गेटिंग ऑन टू द ऐप इज ईजियर फॉर यू? क्योंकि ऐप आप कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट डाटा ऑन योर फोन। तो इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रोवा, डू लेट मी नो। 5599 पर एक मैसेज ड्रॉप करें या फिर मैसेज अस ऑन आवर इंस्टा या फेसबुक हैंडल्स एज वेल। फिलहाल आइए, स्वागत कर रहे हैं आपका इन दिस आवर ऑन रेडियो पब। मैं हूं जिकाश केरा।

0: एक्सप्रेस हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: अगस्त का महीना शुरू हो चुका है एंड दिस इज़ द फाइनल मंथ ऑफ विंटर और इसके चलते हुए तकपुना हर्समिया ग्रीन सेंट्रल हर्समिया रोड पोटर्स पार्क एंड वाई फारा रिकी एंड जेड स्क्वायर यहाँ पर विंटर फेस्टिवल चल रहा है तकपुना विंटर लाइट्स। दिस इज़ कंक्लूडिंग टुमारो, तो आज रात और कल रात तक आपके पास समय है कि यू गो हियर एंड चेक आउट ऑल दिस ऑसम विंटर फेस्टिवल लाइट्स। और इसके लिए बुकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, फ्री है, लेकिन टू मैनेज द क्राउड कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना पहुँच जाए ताकि भीड़ भाड़ हो जाए और फिर एक दूसरे से टकरा कर लोग इस फेस्टिवल का और लाइट्स का मज़ा ना ले सके, तो इसके लिए टिकट्स आपको बुक करने हैं ऑन iticket.co.nz। फ्री बुकिंग है बट इट्स अ मस्ट कि आप बुकिंग करें तभी आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी और वंस यू बुक यू आर इन स्टोर टू विन सम ग्रेट प्राइजेज एज वेल। तो iticket.co.nz पर जाए, लुक आउट फॉर तकपुना विंटर लाइट्स, यू कैन बुक आउट योर सेशन फॉर टुनाइट और टुमारो नाइट। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में आपको हम बताते चलेंगे, जैसे कि चॉकलेट एंड कॉफ़ी फेस्टिवल, ये अगले महीने होने वाला है। कहाँ पर कब आपको जाना है इफ़ यू आर अ चॉकलेट लवर एंड अ कॉफ़ी लवर, तो दिस फेस्टिवल इज़ एन एब्सोल्यूट विल बी एन एब्सोल्यूट डिलाइट फॉर यू गाइज़।

0: Radio Pub.
1: नेशनल प्रोविंशियल चैम्पियनशिप NPC ये शुरू हो चुका है और दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सुपर रग्बी एंड थ्रू टू आवर ऑल ब्लैक सेलेक्शन. तो इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज के बारे में हम बातें करना चाहते हैं, देर इज़ कैंटरबरी वर्सेस ऑकलैंड. इनकी राइवलरी बहुत सालों पीछे तक जाती है एंड न्यूजीलैंड्स प्रीमियर डोमेस्टिक प्रोविंशियल ग्रज मैच इसको कहा जाता है जब कैंटरबरी और ऑकलैंड खेलते हैं. डिफाइंड बाय डेकेड्स ऑफ फियर्स कंपटीशन फॉर द रनफर्ली शील्ड एंड नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप सुप्रीमेसी. 1985 मैच ऑफ द सेंचुरी, सितंबर 14 को 1985 में ऑकलैंड डिफीटेड कैंटरबरी बाय 28-23 एट द लैंकास्टर पार्क इन फ्रंट ऑफ 52,000 स्पेक्टेटर्स, taking the Renfrewshire Shield and starting an 8-year reign with the trophy. 1990 mein Shield defense mein a fiery encounter featuring a red card, a disputed replacement hooker and immense drama hua tha aur phir coaching clashes bhi hue hain. The intensity of the 1980s was driven by legendary mentors Alex Wylie for Canterbury and John Hart for Auckland. To aaj ये मैच दोहराया जा रहा है NPC के चलते हुए. आज मैच अभी तो हो रहा है बिटवीन काउंटीज मनुकाउ एंड तारानाकी, उसके बाद साउथलैंड और ओटागाउ खेलेंगे एट 5:05 PM एंड देन एट 7:10 PM कैंटरबरी वर्सेस ऑकलैंड. ये धमाकेदार मैच होने वाला है लेटर टुनाइट. कल नॉर्थलैंड और मनुआतु खेलेंगे एट 2:05 PM पर. वैसे कुछ मैचेस हो चुके हैं कल. वाइकोटो ने बे ऑफ प्लेंटी को 38-26 से हराया और टेस्मैन की जीत हुई ओवर नॉर्थ हार्बर बाय 31 points to 29. दिस इज वीक वन ऑफ NPC गेम्स.

हम पर कार्यक्रम में अभी आगे बढ़ते हैं। रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। नाउ आई वाज लुकिंग एट सम फ्यूचर इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस इन फुटबॉल और द नेक्स्ट वन दैट आई वुड लाइक टू वॉच इज हैपनिंग ऑन द 3rd of October सोल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता इंडिया में इंडिया और ब्राज़ील के बीच में इंटरनेशनल फ्रेंडली होने वाला है। सो मार्क द डेट अक्टूबर 3rd सोल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता इंडिया में ब्राज़ील टूर करने जा रही है टू प्ले अगेंस्ट द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। इसके बाद में नवंबर 11th को ऑल वाइट्स दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली जब इंडिया की टीम आने वाली है एट द गो मीडिया स्टेडियम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। नवंबर 11th को यह होगा एंड देन नवंबर 14th को इंटरनेशनल फ्रेंडली बिटवीन ऑल वाइट्स एंड इंडिया द सेकेंड मैच विल हैपन एट द 1NZ स्टेडियम न्यूजीलैंड में। तो दीज 3 डेट्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सोका फैंस क्योंकि ब्राज़ील के साथ में एक मैच अक्टूबर 3rd को एंड देन नवंबर 11th एंड 14th को ऑल वाइट्स के साथ में इंडिया खेलने वाली है हियर इन न्यूजीलैंड।

Garba Night with Raj Garvi. This is happening tonight, people, tonight. And abhi tak apne agar ticket nahi liya hai, well, good luck. eventstickets.co.nz par aap jaye and dekhiye kitne tickets bache hain. स्वप्निल शाह को आप कॉल कर सकते हैं 02243947736 पर अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए. वैसे ये गरबा नाइट इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई है. आज महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में ये इवेंट होने वाला है. लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता, प्रांशी ग्रुप ये प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं द ईयर्स मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन फीचरिंग द सेंसेशनल राज गर्वी लाइव. इनको आपने हमारे सोशल्स पर भी लाइव देखा है जब हमने इसी सप्ताह इनको यहाँ पर आमंत्रित किया था. और फिर क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बारीकी से बातें की गई थी, लेकिन सभी बातें नहीं बताई गई थी क्योंकि आज वहाँ पर आपको सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं. काउंटलेस मेमोरीज आपको बनाने हैं यहाँ पर जाकर. वन नाइट वन सेलिब्रेशन. और इफ़ यू हैव बीन प्लेइंग अ लेट लतीफ़ वेल हेड ऑन टू eventstickets.co.nz. शायद ही आपको कुछ टिकट्स अब मिलने वाले हैं. टुनाइट एट महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में गरबा नाइट विथ राज गर्वी लाइव.

0: Yo. Big Radio Pump. Yeah. Hum par aapke saath hain Jikash.
1: फिजी में फिजी फुटबॉल एसोसिएशन बेने के तले जो एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के मैचेस आज हो रहे हैं इंटरेस्टिंग वन टॉप ऑफ द टेबल क्लैश ये अभी जारी है बिटवीन लंबासा एंड बा इससे पहले खेल हुआ बिटवीन लंबासा वीमन एंड बा वीमन फुटबॉल क्लब लंबासा वीमन ने बहुत ही बुरी तरह से बा को 6-1 से हराया है एंड दिस हैपेंड इन लंबासा तो अभी टॉप ऑफ द टेबल क्लैश जारी है इन लंबासा जहाँ पर एक्स्ट्रा सुपरमार्केट लंबासा की जीत हो रही है बा बाय 1-0 तो क्या होगा बा के साथ में विल दे मैनेज टू गेट अ कमबैक या फिर आज निराशा का सामना करने वाले हैं लंबासा में जहां पर खूब हंगामा करके आए थे आफ्टर दे वॉन द फिजी फैक्ट बा 0-1 लंबासा एट द मोमेंट

Hey, welcome back to Radio Pub, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ on the airwaves of Hum 104.2 FM and on Rova. Rova से अगर आप हमें सुन रहे हैं, please let me know कि आप कहाँ पर हैं और आपके साथ कौन कौन है, ये भी जानकर हमें ज़रूर अच्छा लगेगा. इधर 3 बजने का आए हैं इस घंटे पर, कुछ खेलों के बारे में बातें करेंगे जहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो माइट बी वेरी अनकॉमन. तो अगर आपके पास भी कुछ जानकारियां हैं कि किसी एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जानते हैं जहां पर एक बहुत ही अतरंगी सा रूल है जो शायद सुनकर या फिर खिलाड़ियों द्वारा फॉलो करने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो अगर आपके पास ऐसे कुछ जानकारी है हमारे साथ शेयर करें और हम भी आपके साथ में ये सब जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे. वैसे हमारे आसपास भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड आई शेयर इन्फॉर्मेशन विथ यू अबाउट भजन जैम्स. दिस ऑसम इवेंट ये 26 अगस्त को हो रहा है. क्यों हो रहा है एंड कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं टू हेल्प आउट किड्स इन फिजी, तो जानने के लिए हमारे साथ में शामिल रहें क्योंकि एक बहुत ही उच्च दर्जे के आर्टिस्ट रवितेश देव, ही इज़ ब्रिंगिंग भजन जैम्स लाइव टू यू ऑन सैटरडे 22 अगस्त. टिकट्स और इवेंट जानकारी के लिए हमारे साथ में आप जुड़े रहें.

0: कोई ब्रांच नहीं है।
1: ऑलराइट, तो हमने कहा था आपको बताएंगे अबाउट भजन जैम्स। दिस इवेंट, ये इवेंट होने वाला है ऑन द 22nd ऑफ अगस्त वैदिक सेंटर पर, और इसके लिए टिकट्स है $30। और बहुत ही एक्सेप्शनल नाइट होने वाला है जहां पर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ट्रेडिशनल डिवोशन ब्रॉट टू लाइफ थ्रू कॉन्टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स, टैलेंटेड वोकलिस्ट एंड अकम्प्लिश्ड म्यूजिशंस, ऑल इन अ वाइब्रेंट लाइव कॉन्सर्ट सेटिंग। रवितेश देव और इनके साथियों के साथ में आप डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो ऑकलैंड में। एंड ये एक चैरिटी इवेंट है प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड क्यूरेटेड बाय द NZ कल्चरल ट्रस्ट। दिस स्पेशल इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। Now, it is very important for me to tell you कि Gift of Life Fiji क्या है। ये एक organization है जो help करता है बच्चों को congenital heart disease। ये congenital heart defect is a heart abnormality present at birth. The problem can affect the heart walls, heart valves and blood vessels, and there are numerous types of CHDs. Fiji में ये एक सैड रियलिटी है कि मैनी चिल्ड्रन इन फिजी एंड साउथ पैसिफिक वेयर देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल लोकली फॉर चिल्ड्रन विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इनको मदद पहुंचाने के लिए गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी मौजूद है। एंड यू कैन फॉलो देयर पेज giftoflifefiji.com और यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं ये क्या काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज स्टेट्स को देखें till 28th of Feb this year, 445 free heart surgeries बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। Free heart screenings 43,508 free heart screenings और 69,336 free medical consultations किए जा रहे हैं। All thanks to Gift of Life Fiji and people who have been donating and participating in their awesome work। तो इनको मदद पहुँचाने के लिए भजन जैम्स की आयोजना की जा रही है। दिस इज़ एज आई सेड दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 22nd ऑफ अगस्त एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सोल्ड आउट शो, क्योंकि एक तो आप इनक्रेडिबल नाइट ऑफ डिवोशनल म्यूजिक एंजॉय करने वाले हैं और वहीं पर यू विल बी हेल्पिंग आउट किड्स इन फिजी, जो शायद अगर आप ना होंगे तो दे माइट नॉट गेट अ चांस एट लाइफ। तो सोचिए इसके बारे में एंड मार्क योर डेट सैटरडे 22nd अगस्त, भजन जैम्स लाइव हैपनिंग एट 32 ग्लासगो एवेन्यू। टिकट्स आप ले लें eventbrite.com से, जेज वैली जेज फ्रेश मार्ट, जेज फ्रेश पापाटोटोए, वैली फ्रेश पापाटोटोए और शिव प्रसाद कैल्स्टन से ये सभी टिकट्स आप ले सकते हैं।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे.
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
3: किधर है हुनुआ?
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: Yo.
1: Radio Pub. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: How many of you know what pickleball is? क्या आपने इस खेल को देखा है when being played? या फिर do you play pickleball? क्योंकि if you do, you are a very interesting person. क्योंकि pickleball ये tennis, badminton और table tennis इन सभी को मिलाकर एक घोल बनाया जाए तो उस घोल का नाम pickleball रहेगा. तो ये game it's played as singles or doubles. On a 20 by 44 feet court, the size of a badminton court, with a net lowered to 34 inches in the corner. Or, I was looking at some videos, and one very confusing or very tricky rule, जो मैंने देखा है कि इस खेल में kitchen area होता है. There is a 7-foot non-volley zone near the net on both sides, जहाँ पर players cannot hit the ball out of the air. Now, अब गेम स्क्वाश को ले लिया जाए, टेनिस को ले लिया जाए, तो व्हेन यू आर इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो आपको सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में पता होगा, दैट गेट्स यू आउटसाइड द कोर्ट, जहाँ पर जाने से बॉल को आपको रोकना है. वहीं पर देर इज अ बाउंड्री इनसाइड द कोर्ट विच इज़ अ 7-foot नॉन वॉली जोन, जहाँ पर जाकर आप बॉल को आउट ऑफ द एयर नहीं हिट कर सकते. एंड नाउ दैट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, और बहुत ही अपने सराउंडिंग्स के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा इफ़ यू आर प्लेइंग पिकलबॉल. चेक आउट सम वीडियोस एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द किचन एरिया इन अ पिकलबॉल गेम, वेरी इंटरेस्टिंग.

0: बॉलीवुड से हटकर हॉलीवुड की बातें करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु आर एमसीयू फैंस और द अदर सेट हु आर डीसी कॉमिक फैंस. एंड एमसीयू मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में अभी इसी सप्ताह रिलीज हुआ है स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे, एंड इट हैज सेट एन ऑल टाइम हॉलीवुड रिकॉर्ड विद $72 million इन डोमेस्टिक प्रीव्यू टिकट सेल्स अहेड ऑफ इट्स ऑफिशियल ओपनिंग वीकेंड, एंड इट्स स्टिल ऑन ट्रैक टू बीट अ होल लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स. ओपनिंग डे पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट अ हिस्टोरिक opening day total between $167 million to $173 million, and domestic debut the film is tracking for a massive North American opening weekend between $260 million to $280 million. Global office box office ko dekhe to worldwide opening projection estimate a total between $470 million to $550 million. Now I think this is due to the fact ki MCU dwara ek full fledged film kafi dino baad release hua hai, and this is also in line with Doomsday, Avengers Doomsday, which is coming later this year in December. तो शायद जितने भी fans है of Marvel, they flocked to the theaters to give their love to Spider-Man. Have you watched this movie yet? No? Well, I haven't, and I'm trying to get some dates sorted so that I can enjoy this movie. क्योंकि मेरे लिए भी it's a big deal कि MCU द्वारा एक movie आई है, and after quite some time, and this might be also building up towards Avengers Doomsday. तो आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में? वैसे सुपर हीरोज की बातें की जाए तो हमारे बॉलीवुड में भी एक ऐसे सुपर हीरो है जिनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था. तो सुने इस डायलॉग को एंड आप हमें बताएं कि ये किस फिल्म से हमने इस डायलॉग को उठाया है. 5599 पर अपना जवाब आप भेज सकते हैं विथ योर नेम. तो गौर से सुने और बताएं कि किस मूवी का ये डायलॉग है.
1: मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ.
0: दोबारा आपके लिए हम प्ले करेंगे और आप सुने और बताएं कि किस फिल्म का ये डायलॉग है.
1: मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ.
0: तो सुपर हीरो मूवी में भी इमोशंस निचोड़ कर भरा गया था इस मूवी में. अपना जवाब भेजो हमारे पास 5599 पर विथ योर नेम.

0: सवाल जो हमने किया है डायलॉग को आपके लिए हम दोहराते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो चुका है एंड पीपल आर मिस्टेकिंग द आंसर बिटवीन टू मूवीज. तो गौर से सुने, यू गॉट द एक्टर राइट, लेकिन किस मूवी का ये डायलॉग है?
1: मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ.
0: 5599 पर अपने नाम के साथ में अपना जवाब हमारे पास भेजिए.

0: Yo. Big Radio Pub. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
1: ऑलराइट, तो क्रिश और कोई मिल गया, इसके बीच में भिड़ंत है एंड वन ऑफ देम इज द राइट आंसर. जो डायलॉग है कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है. तो रोहित ने कहा है, कब कहा है, कोई मिल गया में कहा है या फिर क्रिश में कहा है? फाइंड इट आउट. हो सके तो चेक आउट सम वीडियोस और हो सके तो पूरा फिल्म आप फास्ट फॉरवर्ड पर देखें एंड यू माइट जस्ट कम अक्रॉस द सीन. किसी ने कहा है कि इट वॉज सेड बाय रोहित व्हेन ही वॉज इन सिंगापुर. तो रोहित सिंगापुर कब गए थे, कोई मिल गया में गए थे या फिर क्रिश में गए थे, ये आप पता लगाएं एंड हमारे पास मैसेज करें कि डायलॉग किस मूवी का हमने आपके साथ में शेयर किया है. इसके अलावा थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे अबाउट कंसल्टेशंस जो शुरू होने वाले हैं अबाउट दी प्लान चेंज 120 प्रपोज्ड चेंजेस जो अप्रूव हुए थे बाय दी कमिटी. और इस पर कौन कौन से चेंजेस को बैकट्रैक किया जा रहा है एंड अब सेकंड राउंड ऑफ सबमिशंस के लिए इनवाइट किया जाएगा आपको लेट अगस्त में. तो ऑकलैंड में प्रपोज चेंजेस टू प्लान चेंज 120 क्या है और कब आप अपना सबमिशंस दे सकते हैं, जानने के लिए हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहेगा राइट हियर ऑन हम 104.2 एफएम या फिर थ्रू रोवा. इसके बारे में आर्टिकल्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे ऑन आवर सोशल्स एज वेल. Thank you.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

Radio Pub. चार बजकर दो मिनट हो चुका है, आज है 1st of August एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, भाई हमें भी आप न्योता भेजिए 15599 पर, आपकी खुशियों को हम तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे और तमाम लोगों की आशीर्वाद आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो लेट मी नो इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, या फिर आपके घर पर कोई ऐसा शख्स है जो आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहा है, मेक इट मोर स्पेशल फॉर देम, डेडिकेट देम अ सॉन्ग, गेट इन टच विथ मी ऑन 5599 या फिर यू कैन कॉल मी ऑन 0800-004-866 और विल मेक योर और देयर डे इवन मोर ब्यूटीफुल। तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर आप अपना बर्थडे या फिर अपनी शादी की सालगिरह, कोई भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया आपको जा रहा है, आपके आपके दिल चाहे तोहफे मिले हैं, अपने और अपनों का प्यार बेशुमार मिला है और आज रात आपके लिए और भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि टुनाइट इज़ योर नाइट। आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं। इस घंटे पर अपडेट्स अबाउट गेम्स जो इस सप्ताह अंत हो चुके हैं एंड द फ्यू मैचेस जो आज रात को होने वाले हैं एंड कल होने वाले हैं, व्हाट आर दोज मैचेस, कहाँ पर खेले जाएंगे एंड व्हाट स्पेशल अबाउट देम, ये सभी जानकारियाँ इस घंटे पर आपके साथ में हम शेयर करेंगे राइट हियर ऑन 104.2 एफएम रोवा पर, रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। क्योरा

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग में जो खेल हो रहा है बिटवीन बा एंड लंबासा, ये एंडिंग स्टेजेस पर पहुंच चुका है. बा 1 लंबासा 1. थोड़ी देर पहले हाइड्रेशन ब्रेक हुआ और उसके बाद अभी हाल ही में इन द लास्ट फ्यू मिनट्स बा ने दो चेंजेस किए हैं टू मेक मोस्ट इम्पैक्ट इन द एंडिंग मिनट्स ऑफ द गेम. तो क्या होता है इस खेल के अंत पर, जानकारी हम आपको यहां पर पहुंचाने वाले हैं. फिलहाल बा एंड लंबासा आर एट वन गोल ईच प्लेइंग इट आउट इन लंबासा. सवाल हमने पिछले घंटे पर किया था अबाउट माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, ये किस मूवी में था. एंड दिस इज फ्रॉम क्रिश, नॉट फ्रॉम कोई मिल गया. हाँ, दोनों सेम फ्रेंचाइज की मूवी है, लेकिन दिस वॉज इन द सेकेंड मूवी. रोहित सिंगापुर में होता है एंड वहाँ पर ही कॉल्स बैक हिज मॉम टेलिंग कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है. तो जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया था या फिर आपने हमारे पर मैसेज किया था, आप सभी को थैंक यू वेरी मच. सल्लू है गल्फ हवा में, आपको हम शामिल कर रहे हैं. एंड रियान, आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच. कोमल, आपने भी मैसेज भेजा था. और रोनल, आपका भी जवाब हमें मिला था, थैंक यू सो मच. आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, available at all leading stores.
7: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
8: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
9: Andy didn't think he needed a DVS system.
10: Nah, we're all right, aren't we?
9: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
11: Yeah, Dad!
9: So Andy got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: Radio Pub.
1: सिटी लिंक के बारे में आप एड्स में सुन रहे हैं एंड फाइनली दिस ऑसम ऑसम मैसिव प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड एंड नाउ यू कैन रजिस्टर योर इंटरेस्ट फॉर गेटिंग ए टूर of the City Rail Links and the three newest stations. So, 8th August ko first look at the Maungafau station, 15th August ko first look at the Karangahape, and 22nd August ko first look at the Te Waihorutiu. Agar aap jana chahte hain yahan par, this will be a managed tour, managed event taki zyada bheed bhaar na ho, aur iske liye tickets aapko lagne wale hain. पर घबराइए मत, टिकट्स फ्री रहेंगे. दिस इज़ मोर ऑफ ए रजिस्ट्रेशन फॉर यू टू गेट देयर इन मैनेज्ड नंबर्स, ताकि सेफली और विदाउट एनी हैसल जितने भी लोग रजिस्टर होंगे उनको यहाँ का टूर दिया जा सके. एंड ऑकलैंडर्स, यू कैन प्री रजिस्टर फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस इवेंट्स थ्रू अ लिंक. लिंक है pages.iticket.co.nz पर. Look for station first looks event, or yahan par you can be among the first to step inside the Auckland's City Rail Link stations before they open to passengers. pages.iticket.co.nz par jaye CRL first looks ye aap look up kare, put in your email, register your interest there, and you'll be contacted through an email jahan par fir jaakar aap tickets lene ke liye बताया जाएगा. टिकट्स विल बी रिलीज अप्रोक्सीमेटली वन वीक बिफोर ईच स्टेशन्स फर्स्ट लुक इवेंट डेट. तो दिस इज योर चांस टू गो इन एंड हैसल फ्री हैव अ फर्स्ट हैंड टूर ऑफ द न्यू ऑसम सीआरएल स्टेशन्स.

ऑलराइट, तो फिजी फुटबॉल एसोसिएशन एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग में जो मैच हो रहा था इन लंबासा बिटवीन एक्स्ट्रा सुपरमार्केट लंबासा फुटबॉल क्लब एंड दयाल सोमिलन्स बा फुटबॉल क्लब. गुड न्यूज़ फॉर द मैन इन ब्लैक, बा टीम की जीत हो चुकी है इस खेल में बाय 2-1 एंड नाउ बा इज ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड फॉर द एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग. तो congratulations to the Ba team and the fans of Ba. वैसे FIFA World Cup तो खत्म हो चुका है and the

0: Radio Pub.
1: FM और रोवर पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ एंड रेडियो पब का सफ़र जारी है। नाउ कीबोर्ड वॉरियर्स, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो लोग जो स्क्रीन के पीछे छुपकर बस लोगों पर वार करते हैं, कमेंट करते हैं, फलाना अच्छा बुरा जो बुरी चीज़ें लिखते हैं। एंड क्या आप इसमें अपना वक्त ज़ाया करते हैं अबाउट लाइक बीइंग इन द कमेंट सेक्शन एंड यू नो काउंटर कमेंटिंग ऑन पीपल्स कमेंट। मैं देख रहा था एक पेज है greateraukland.org.nz, यहाँ पर हुएवर इज़ रनिंग दिस पेज इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब अबाउट अपडेटिंग ऑल द डेवलपमेंट्स जो इन एंड अराउंड इन द ग्रेटर ऑकलैंड एरिया हो रहा है। एंड दे व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव ओपन्ड the opportunity to for people to comment and I was going through some of the comments and bas logo ke dimag mein negativity hi bhari hui hai. Kuch bhi development ho uske liye kuch acha dekhne ke bajaye bas they find the negatives in that and bas comment dal dete hain and fir uske niche log उनको बुरा भला कहते हैं। एंड दिस वन आर्टिकल जो मैं देख रहा हूँ इसके नीचे लगभग 39 कमेंट्स है एंड दिस देयर आर टू पीपल हु आर जस्ट गोइंग एट इट और जितना समय इन्होंने ज़ाया किया है आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इतना समय ये खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते तो दे वुड बी बेटर पर्सन और बेटर प्लेसेस। So go check it out, greateraukland.org.nz, not for the comments, but for the articles jo yahan par diye gaye hain. You'll end up getting more knowledgeable about what's happening in the Greater Auckland area.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey,

5 बज रहे हैं सरडे द 1st of August 2026 का ये सफर एंड रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ देने वाला हूँ फॉर अनदर आवर टिल 6 PM। तो बस यूं ही हमारे साथ जमे रहे इस घंटे पर। विल बी ब्रिंगिंग यू स्पोर्टिंग न्यूज़ आउट ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन टीम्स कहाँ पर क्या खेल रही है, हार रही है, जीत रही है, ग्लासगो में क्या हो रहा है विद द इंडियन एथलीट्स, और ये जानने के लिए बस यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहे। प्लस इधर उधर की खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। याद रहे लोटो आज $5 million ड्रॉ होने वाला है। हैव यू गॉट योर नंबर सॉर्टेड? इफ नॉट, अभी भी आपके पास मौके हैं, गो एंड गेट योर टिकट्स, ताकि आपकी तकदीर भी शायद आज ही चमकने वाली है। तो ये सभी बातें करते चलेंगे राइट टिल 6 PM। फिलहाल मैं हूँ जिकाश, हमिंग अलोंग विथ यू इन रेडियो पॉप टिल 6 PM। क्योरा।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
4: Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road!
3: In just 23 minutes.
4: Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.

0: Radio Pub.
1: रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं. सवाल हमने आपसे किया है अबाउट द एथलीट जो जेवलिन स्पोर्ट, जिन्होंने जेवलिन में ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया था फॉर टीम इंडिया. एंड ही इज़ ऑल्सो फीचरिंग फॉर टीम इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पर ही हैज़ सिक्योर्ड हिज सिल्वर मेडल अलोंग साइड हिज फॉर्मर टीम मेट यशवीर सिंह. तो किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे पहला जेवलिन ओलंपिक गोल्ड मेडल लाया था. 5599 पर ये जवाब आपको हमारे पास भेजना है. और इससे हटकर अन्य खबरों में देखें तो सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ ये होने वाला है ऑन 3rd of August, दैट इज़ ऑन मंडे न्यूजीलैंड समय अनुसार. तो इस पर भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे. एंड देन द फर्स्ट ODI बिटवीन आयरलैंड एंड अफगानिस्तान, दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 5th of August इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार, विच विल बी ऑन द 6th of August हियर इन न्यूजीलैंड. तो इस पर भी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे.

0: You're listening to Chikash.
1: दुनिया और भी डिजिटल होती जा रही है एंड इन दिस फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को अपडेट करें इन रिगार्ड्स टू एप्स एंड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग. तो बच्चे आई थिंक जब ये अभी छोटे हैं इट विल बी अ ग्रेट टाइम टू गेट देम इनटू कोडिंग. किसी भी तरह का कोडिंग हो, चाहे गेम्स बनाना हो, चाहे थ्रू कोड ड्रॉइंग्स बनाना हो या फिर पिक्चर्स क्रिएट करना हो थ्रू कोडिंग, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू गेट इनटू और डेवलप दिस स्किल. एंड देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कोड क्लब ऑटेरोआ, जहाँ पर बच्चों को हेल्प किया जाता है टू गेट इनटू कोडिंग. एंड देयर आर 274 कोड क्लब्स अराउंड ऑटेरोआ हु आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स और न्यू स्टूडेंट्स. You can head to codeclub.nz और यहाँ पर आपको एक सैटेलाइट इमेज मिलेगा, मैप मिलेगा, विच विल शो कि आपके इलाके में कोड क्लब के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है. एंड अ फ्यू ऑफ देम आर रनिंग कोर्सेज फ्री ऑफ चार्ज. तो codeclub.nz पर आप जाए, यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, लॉग इन, रजिस्टर एंड लॉग इन, एंड यू कैन फाइंड अ क्लब इन योर एरिया. कोड क्लब ऑल्सो गोज टू लाइब्रेरीज, जहाँ पर ये फ्री सेशंस रन करते हैं हेल्पिंग किड्स गेट इनटू कोडिंग. तो इफ़ यू हैव इफ़ यू आर अराउंड एल्बनी लाइब्रेरी में आप जाइए, आप इसको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा.

एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है एंड दिस इज़ फॉर एशियन फैमिली सर्विसेज। जब ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए आप कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। याद रहे, अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर फ्री कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट, या फिर asianfamilieservices.nz पर आप विजिट कर सकते हैं। Playing Bollywood's biggest hits.

0: Radio Pub.
1: All right, जो सवाल हमने आपसे किया था अबाउट द जेवलिन चैम्पियन फ्रॉम इंडिया, दैट्स नन अदर देन नीरज चोपड़ा, एंड इन्होंने अपने लिए एक सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है इन द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर अलोंगसाइड विद हिज टीममेट यशवीर सिंह हु वॉन ब्रॉन्ज. तो जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया था, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. एंड NRL में जो खेल हो रहा है बिटवीन टाइटंस एंड वॉरियर्स, गुड न्यूज़ फॉर वॉरियर्स, सो फॉर 26-6 से टाइटंस को हमारी वॉरियर्स हरा रही है. 37 मिनट्स तक ये खेल पहुंच चुका है इन द फर्स्ट हाफ. तो होपफुली दे हैव दिस इन देयर बैग एंड विल बी क्लाइंबिंग अप द पॉइंट्स टेबल. इसके बाद में आज पैंथर्स और रेडर्स खेलेंगे 7:30 PM पर, और फिर 9:30 PM पर ब्रोंकोज और नाइट्स खेलने वाले हैं. दूसरी ओर NPC में आज बहुत ही ज़बरदस्त भिड़ंत होने वाली है बिटवीन कैंटरबरी एंड ऑकलैंड एट 7:10 PM. फिलहाल साउथलैंड और ओटागो खेल रहे हैं. ओटागो इज़ लीडिंग बाय 24-7. टुमारो नॉर्थलैंड और मनवातु आमना सामना करेंगे, और कल एक बार फिर मैं आ जाऊंगा आपका साथ देने के लिए फ्रॉम 6 PM इन संडे नाइट मेलोडीज. मतलब अब हमारे यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. आई हैव एन्जॉयड रेडियो पब टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, एंड आई होप कि आपने भी इस कार्यक्रम को उतना ही एंजॉय किया होगा. अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल शाम 6 पर. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट सैटरडे इवनिंग एंड एन ऑसम संडे. आप सभी को मेरा नमस्कार.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: If it's savings you want, it's savings you'll find at Briscoe's with Super Size. Store-wide savings for the whole house until Sunday. So hurry in, grab a basket or trolley and bag Super Size store-wide savings. Only till Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
8: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.

0: ब्रांच में है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: ऐसी किसी पीढ़ी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ।
1: तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी?
0: रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।

0: एक दिन ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे।
1: फिर भी कभी कभी मिल ही सकते हो?
0: उतना नहीं जी, वही दुनिया के झमेले, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ते लाइफ के इशारों पे नचते जाओ। टिमलक लगते टिमलक लग कॉलेज दे गेट दे इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं, ते दूसरी तरफ लाइफ हमको नचाते हैं। टिमलक लगते टिमलक।

पिघले नीलम सा बहता हुआ ये ज़मां, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई दहनिया कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं सिर्फ मैं।

अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम तो।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
2: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

तारा मतलब वो तारा जो एक जगह पे ना ठहरे, फिर भी अपनी चमक ना बदले, चाल ना बदले और ना बदले वो चेहरे। अंबर जैसा एक समंदर, चांद है कश्ती पानी में, देखो जोर जवानी में एक किनारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
7: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम।

0: Night Flight on Hum.
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरेज़।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane.

0: ध्यान रखना।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
2: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
2: हाँ हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक।

नाचना है ना जाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये ये ये करके दिखाओ ये फिर ये अब ये ये ये

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई ले

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Budget the gun day.

0: Night Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budget gaane.

हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।

0: भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
1: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

आप सुन रहे हम सन्डे ब्रेकफास्ट शो विद आरजू, मैं हूँ आरजू आपके साथ. एंड इफ यू लव टू सेलिब्रेट इंडिया की मानसून फेस्टिवल देन यू लकी, क्योंकि ये ऑकलैंड में आ रहा है अगले सैटरडे को, इस सैटरडे एक्चुअली 8 अगस्त को माउंट एल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल में शाम 4:30 PM से 8:30 PM तक. एंड ये फ्री एंट्री है. एंड ये इवेंट की highlights hai culture performances, traditional Indian dance or music, and obviously dheer sara khana, authentic Indian food. And there's also going to be a dedicated kids corner bhi, and dheer sari games, activities, and you know, all musty fun stuff for all ages. And also aapko shopping karna bahut pasand hai, then there's going to be a lot of stalls offering some Indian goods to be shopped. So ye hone ja raha hai is Saturday ko 8 August at Mount Albert War Memorial Hall, sham 4:30 PM se 8:30 PM tak.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sale event today.
4: There's thousands off display models, scratch and dent and end of line spa pools, swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
3: Hurry, ends today from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
5: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: Chill, sip, smile.
6: This is Sunday Breakfast.
7: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड इफ यू समवन हु इज़ लुकिंग इनटू डीपनिंग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, देन चिन्मय मिशन इनवाइट्स यू टू भगवद गीता डिकोडेड अ मास्टर क्लास. ये एक ये आपको सिखाया जाएगा बाय अ वेदांत टीचर ईशान चैतन्य, एंड इट्स गोना बी बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ पूजा स्वामी चिन्मयानंदा. और ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, वेरी परफेक्ट फॉर एनीवन जिसको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है. एंड ये इस फ्राइडे को होने वाला है, 7th August को 7:30 PM से 9 PM तक. एंड ये बिल्कुल फ्री है. ऑल यू हैव टू डू इज़ रजिस्टर. सो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. आप वेबसाइट में जा सकते हो www.chinmaya.org.nz, दैट इज़ www.chinmaya.org.nz. एंड इसका लोकेशन है न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर, मेन हॉल में, 45 Tolter Avenue, न्यू लिन में.

When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. पिछले 28 सालों से Asian Family Services पूरे न्यूजीलैंड में Asian communities को mental health, addiction, gambling और social support की services provide कर रहा है. हमारी experienced team आपकी language और culture को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही support मिल सके. अब शुरू हो रहा है Reach and Reach Out. ये एक national campaign to encourage open conversations about mental health because a simple conversation can make a real difference. अगर आपको ये आपकी किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो Asian Helpline पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या फिर asianfamilieservices.nz पर विजिट करें.

0: आप सुन रहे हम और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. अगला सॉन्ग मेरी फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स से मनोज ने रिक्वेस्ट किया था फॉर टू डेडिकेट टू हिम. सो इफ यू आर मनोज लिसनिंग टू दिस आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आप सुन रहे हम और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड नेक्स्ट अप आई विल टेलिंग यू हाउ यू कैन एक्सपीरियंस भजन की कॉन्सर्ट. सो बेसिकली एक कॉन्सर्ट वाली सेटिंग जहाँ पे टैलेंटेड आर्टिस्ट वोकलिस्ट विल कम थ्रू एंड प्ले सम अमेजिंग भजन्स फॉर यू.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूँ आरज़ाव के साथ. एंड इफ यू लव टू एक्सपीरियंस भजन जैम्स लाइव, ये होने वाला है अगस्त 22nd को, सैटरडे को 7 PM में एट वेरिक सेंटर इन पापाटोयोटो ऑकलैंड. एंड टिकट्स शुरू हो रहा है $30 से. And children under 5 are free to enter. And वहाँ पे snacks or kava will also be sold out. But you might be wondering, Bhajan Jams Live, ये क्या है? So basically, you get to join Ravitesh Deo and an incredible live band for an uplifting evening of devotional music, fusion bhajans and kirtans. So just experiencing a concert wali setting, जहाँ पे amazing vocalists and musicians and arrangements will be done, and you'll just have an amazing time. So आप अपनी family के लिए आ सकते हो या फिर friends, and have a memorable evening of live music, devotion and community. आप अपनी tickets eventbrite.co.nz से खरीद सकते हो, या फिर Jay's Fresh Papasote में भी मिल सकता है, या फिर Valley Fresh Papasote, या फिर Shu Prasad Kelston में.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स इट्स मैं हूं आरजू आपके साथ. नेक्स्ट अप आई विल बी टेलिंग यू कौन सी बॉलीवुड मूवीज रिलीज होने वाले हैं न्यूजीलैंड के थिएटर्स में.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ west में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
3: Jackie didn't think she needed a DVS system.
4: Our home is brand new.
3: Does your new home have condensation? And can it get a bit

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक सेट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड बिफोर गेटिंग स्ट्रेट इनटू द बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाले हैं न्यूज़ इन थिएटर्स में, इफ़ यू हैवन वॉच धमाल 4 जो रिलीज हुआ था जुलाई 10th को, देन दिस इज़ योर साइन, क्योंकि आज आखिरी शो प्ले होने वाला है मनुकाव में, इवन सिनेमाज में. सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़न्ट हु फॉरगॉट अबाउट वॉचिंग इट लाइक मी, या देन इट इज़ इन द थिएटर्स टुडे एट 8 o'clock. और सो फॉर मूवीज दैट्स रिलीजिंग this coming soon August mein, we have Batwara 1947 and Awarapan 2, which are both releasing August 14th ko. Ek periodical historical drama hai, isme Sunny Deol, Preeti Zinta hai, and Awarapan 2 mein it's more like a romantic drama, isme Imran Hashmi hai aur Disha bhi. And we have उसके बाद अ टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स एंड इट इज़ एन एक्शन ड्रामा. इसमें यश है, कियारा अडवाणी, और ये रिलीज होने वाला है अगस्त 26th को. एंड देन वी हैव मिर्ज़ापुर द मूवी जो सितंबर 4th को रिलीज होगा. इट्स अ क्राइम एक्शन थ्रिलर बेस्ड ऑन द वेब सीरीज मिर्ज़ापुर.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरज़ू आपके साथ. एंड नेटफ्लिक्स में एक नई शो आई है एंड इट हैज़ बीन द टॉक्स ऑफ द टाउन. इसका नाम है मुसाफिर कैफे. एक रोमांटिक ड्रामा है, कोजी रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लोरिंग मॉडर्न रिलेशनशिप्स, सेल्फ डिस्कवरी एंड अनप्लान्ड कनेक्शंस. या सो इसकी बहुत अच्छी कॉमेंट्स लाइक रिव्यूज दिखाए मैंने ऑनलाइन में. लेट मी नो आपको क्या लगा है 5599 पर, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट. बट मेरी टाइम नहीं है अब, बट व्हेन आई हैव द टाइम दिस इज वन ऑफ द शोज आई वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स में. लेट मी नो इफ इट्स वर्थ इट. मैसेज कीजिए 5599 पर.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी
3: ये मैं

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
1: Chill, sip, smile.
2: This is Sunday Breakfast.
3: आपने हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हुआ है जो आपके साथ श्रीराम मंदिर की अखंड रामायण पाठ कल से शुरू हुआ था कल 7 बजे सुबह की रोथ पूजा से और अब आज 10 बजे 10 एम में रामायण पाठ खत्म होने वाला है एंड उसके बाद 10:30 एम में हवन और आरती शुरू होने वाला है सो इफ यू लाइक टू गो द एड्रेस इज श्रीराम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में

आप सुन रहे हम, मैं हूँ आरजू और वो था राहत फ़तेह अली खान इश्क रिस्क. और इफ़ आपको राहत फ़तेह अली खान के गाने नॉन स्टॉप सुननी है दैन आप हमारी ऐप रोवा डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से. एंड वहाँ जाकर आप राहत फ़तेह अली खान की प्लेलिस्ट सुन के आप बैक टू बैक बस राहत फ़तेह अली खान सुन सकते हो. सो या डाउनलोड रोवा ROVA.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Farmer's birthday sale for Farmer's Club members is now on. Up to 50% off kitchen and dining, 50% off beds by Sleepyhead, and up to 50% off furniture and small appliances. Farmer's birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
7: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favorite trail. Fueled with the protein, fiber and vitamins you need to get up and go.
8: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
9: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
9: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
8: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड द ग्लोबल सुपरस्टार करण ओजला इज ब्रिंगिंग हिज पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू स्पार्क एरेना इस महीने को अगस्त 25th एंड इट्स गोना बी अ नाइट टू रिमेंबर उनके हिट सॉन्ग्स उनकी इनक्रेडिबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफाइंग लाइव शो के साथ सो इफ यू लव टू विन अ डबल पास हमारे पास आपके लिए एक डबल पास है सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आपको आंसर करनी है टेक्स्ट के द्वारा सो जस्ट टेक्स्ट थ्रू के ए एंड द राइट आंसर एंड सेंड इट थ्रू टू 5599 ईजी सो माई क्वेश्चन टू यू टुडे इज करण ओजला की रियल नेम क्या है फुल रियल नेम टेक्स्ट थ्रू जस्ट अ हिंट three words hai so yeah send it through unki full real name with the keyword ka and to 5599 and if you're right you're in the draw to win that double pass but yeah if you'd love to know more of the tickets information then aap hum.rova.nz mein ja sakte ho but yeah it's gonna be a night to remember

आप सुन रहे हम्पलिंग बॉलीवुड स्पीकर सेट सो मैं हूं आरजू आपके साथ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू अनाउंस कि चुंबक नेटफ्लिक्स की चुंबक शो ये एक फैमिली कॉमेडी सीरीज है बेसिकली फाइव फैमिलीज लिविंग साइड बाय साइड एक्सप्लोरिंग द एवरीडे सेलिब्रेशंस अप्स एंड डाउन्स यू नो केओस दैट अनफोल्ड्स विद इन देयर क्लोज नेट कम्युनिटी नेबरहुड वाली कॉमेडी फैमिली सीरीज है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि इनका रिलीज डेट अनाउंस फाइनली हो चुका है इट्स फाइनली रिलीजिंग ऑन August 28th ये इसी महीना सो फाइनली क्योंकि आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस लाइक अर्लियर दिस ईयर एंड आई हैव बीन वेटिंग चेकिंग नेटफ्लिक्स की सोशल मीडिया टू फाइंड आउट व्हेन इट्स गोना बी रिलीज एंड हैज दे हैव फाइनली आंसर्ड आवर प्रेयर्स सो इट्स गोना बी सच एन अमेजिंग शो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक दिस लाइक हिट्स दैट नॉस्टैल्जिक स्पॉट एज वेल At least for me, and you know, also loved growing up watching neighborhood wali Hindi serials bhi. So it's gonna be really good. Or I didn't know until now ki ye show ki creators Sarabhai versus Sarabhai ki creators hai. So I know it's gonna be a good one. So yeah, aapki dates save kijiye 28th August ko hamari Netflix mein Chumbak yani ki you know magnet wali is gonna be releasing. And I'm guessing the reason why they've named Chumbak is kyunki life mein kya ho like obviously there's gonna be problems here and there, ups and downs hoga, but at the end we come back together. Like a magnet. Oh, wow, deep. Anyways, let's get back to the music.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक के समय हूँ आरजव के साथ. टाइगर श्रॉफ कुड बी मेकिंग हिज प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू. सो रिपोर्ट्स के अनुसार ही माइट बी प्लेइंग एट द 135th डूरंड कप विथ मुंबई एफ सी. स्पेलिंग MUMBAY है, सो आई एम गेसिंग इट इज मुंबई एफ सी. सो ये डूरंड कप एशिया की oldest tournament hai football ki, and yeah, he might be playing it. How cool is that? Oh my god, he's obviously incredibly talented. Unki martial arts skills se, dance, acting, and now even a football professional. And yeah, so he has been going on regular training team ke saath, and yeah, he might be making his debut soon at the Durand Cup.

0: अच्छा फील हो, टिकल योर टेस्ट बड्स।
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरजू आपके साथ। एंड आज की टिकल योर टेस्ट बड्स के लिए वी विल बी गोइंग टू, एक्चुअली वी कांट गो टू एक प्लेस, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो मैं रेकमेंड करने वाली हूँ वो दो प्लेसेस की कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज़ जापान एंड इटली।

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: Sunday breakfast.
6: Zaika, to feel ho. Tickle your taste buds.
7: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स, तो मैं हूं आरजू आपके साथ। एंड इफ यू लव टू कैच सम फ्यू बिट्स एंड कॉन्वर्सेशंस विद हमारी ब्रेकफास्ट शो विजय और पूजा, टेक्स्ट थ्रू BF टू 5599 एंड यू कैन कैच ऑन टू देयर पॉडकास्ट एंड दे विल बी बैक टुमारो एट 6 AM।

When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. अगर आपको या आपकी किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या फिर asianfamilieservices.nz पर विजिट करें.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. शाहरुख खान हमारे किंग खान भी अ बिट सुपरस्टिशियस है एंड उन्होंने अपनी नंबर ये अपनी गाड़ी की नंबर सेम रखा है फॉर ऑल हिज लाइसेंस प्लेट. सो द ओनली थिंग दैट्स चेंजिंग इज द लेटर्स इन द लाइसेंस प्लेट बट देयर्स थ्री नंबर्स दैट्स लाइक दिस थ्री नंबर्स की कॉम्बिनेशन है जो every license plate mein hai, any car that Shahrukh Khan owns. Let me know if you could guess it. 5599, send through your guesses and I'll reveal to you his number combination that is in every number plate of his car.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
7: Now I'm here.
6: Back here now.
7: Here I am.
6: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
8: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
9: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
8: There you have it, up to 70% off selected stock, and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event. Hurry, last day today from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent, certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
10: If it's savings you want, it's savings you'll find at Briscoe's with supersize store-wide savings for the whole house until Sunday. So hurry in, grab a basket or trolley and bag supersize store-wide savings only till Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
11: Chill, sip, smile.
12: This is Sunday Breakfast.
13: Bollywood movies, jo release

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थ्रू. आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे.
1: समझ में नहीं आ रहा तेरा घर का पता है यार. ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया.
2: तो कटिंग लाना है.
1: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ.